0: सरदार जी सत श्री अकाल।
1: और संत्या किवें आ?
0: सरदार जी कुछ पैसे दी लोड़ सी।
1: और केड़े पैसे हो?
0: दो दिन दी कुड़ी बीमार है जी।
2: सरदारा सुट दाना ते पटाला है, कुड़ी पटाका है, पटाका सरदारा।
1: ना ओ संत्या पैसे ते जे और लोड़ होवे तो ला जमी मेरे कोलो।
0: जाउंदे रहो जी।
1: कल सुन कुड़ी हो गई है तेरी जवान।
0: हां जी।
1: कोई काम शम कराना है तो मेरे कोल भेज दी।
0: बहुत अच्छा।
1: जा बग जा।
0: धन्यवाद जी। सो श्री अकाल जी।
3: मां जी तुसी एथे तुसी मेरे को स्नेहा कर देना सी, मैं थोड़े कोल आ जांदा।
4: स्नेहा ते एक पासे रहा, तू मेरे इथे आई दा काम कर दे, मेनू मेरे पैसे दे दे, मेनू पैसे दी सख्त लोड़ है।
1: ओ मां जी पैसे ते मैं थोड़े घर पहुंचा देने सी, मेरा अजकल थोड़ा जा हाथ बहुत तंग।
4: तेरा हाथ ते हमेशा ही तंग रहंदा है, कदी मेरे हाथ बारे भी सोचे? जीदी तू जमीर बंदा कई साल तो नाले नाले ए जड़े 100-100 दे नोट दिते ने, के किथों आए?
1: ओ मां जी ओ ते गरीब आदमी समझ के मैं ओदी मदद कीती सी, थोनू पता गरीब वाली ता मैं बहुत मदद करदा।
4: मदद कीती है किसी गरीब नु ती दा मूल दिता है। मैं तैनू आखरी बार कह रही हां, मेरे पैसे दे दे नहीं तो मैं पुलिस को जावांगी, समझे?
5: यही पर से
6: बड़ा बोल दी सी सरदारा, बड़ा संग पाड़ रही सी।
1: दे मुंह नु आहो जे तोपे लाऊंगा, एदी जुबान तक की एदी नब्ज चलनी बंद हो जानी।
0: ये बहुत माड़ी बात है भाई, तू बुढ़िया के पैसे क्यों नहीं देता?
1: और तेनू किन्ने बारी क्या मेरे कम्मा च दखलंदाजी ना करे कर।
0: ये अच्छी बात कोनी सा, मैं इसके बाद तेरी शक्ल को नहीं देखूं।